हर पुरुष प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमली अमल न अंबड़े, मच्छी नीर न होए। जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता, नीर कहते ने पानी, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती।

वत्स्य अभियानात् शब्द जदों में आप सुनी ओदे एक एक पंक्ति वल ध्यान देइए ओदी विचार हिरदे विच वसाइए ता मन जेड़ा है ओ फिर भटकेगा नहीं। हर इंसान परमेश्वर दी निगाह विच है क्योंकि परमेश्वर सारिया दे नाल वसदा है ओदी निगाह तों।

श्री गुरु नानक देव जी महाराज बयान करते ने, ऐ परमेश्वर मैं तेरा बाणिया हां, तू मेरा साहिब है। साध संगत आज दे इंसान कोल चार पैसे आ जा, कोई थोड़ी बहुत ताकत होवे वो समझदा कि मेरे वर्गा हुण कोई नहीं, ए जड़ी मैं है एहो इंसान नूं चैन नाल नहीं बैठन देंदे। अज हर इंसान दुखी है, चाहे वह गरीब है, अमीर है, कोई राजनीतिक है, और ये भी देखे है कई धर्मी भी दुखी ने, क्योंकि नाम रखवाण दे नाल कोई धर्मी नहीं हो जाता। जदों तक मन विचों हौमे नहीं जाती उदों तक इंसान सुखी नहीं हो सकता। हौमे की है? मैं जो कहना ठीक है, जो मैं कह रहा वो ठीक है, जो मैं कर रहा वो ठीक है, बस ये मैं इंसान नूं जीवन नहीं दिंदी। घरां विच भी सुख नहीं, घरां विच भी मैं है, भरा भरा दा प्यार नहीं, प्यो पुत्र दा प्यार नहीं, पत्नी पत्नी दा, पत्नी और पति दा रिश्ता बड़ा गूढ़ा संबंध है, पर कई बार इन्हां विच भी प्यार नहीं रहिंदा, क्योंकि जिथे हौमे और माया आ जावे उत्थों प्यार उठ जांदा है, और हौमे तां आंदी है जदों इंसान परमेश्वर नूं भुला दे। गुरु नानक साहब गुरु होके गुरु होण दा मन विच माण नहीं, कहिंदे ने ऐ परमेश्वर मैं तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दी रास दिती है। जिस तरह कोई सेठ अपने नौकर नूं दुकान ते बिठावे ते आखे लै तू हुण सौदा वेच, ते साहिब जी कहिंदे ने अकाल पुरख मैं भी तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दिता है कि ऐ नानक तू मेरा नाम दुनिया विच वंड, भाव मेरा नाम लोगों नूं जपा और मेरे नाल जोड़। ते साहिब जी कह रहे ने अकाल पुरख मैं तेरा नौकर हां, मैं तेरा गुलाम हां, मैं तेरे नाम दा ढंडोरा दुनिया नूं दे रहा ताकि लोग सुखी हो सकन, पापां तों झूठ तों ओ बच सकन।

जा सिफत करी अरदास। कई लोग कहते जदों भी पाठ करन बैठिए भजन करन वास्ते बैठिए मन नहीं टिकदा। मन किस तरह टिके? जद मन विच विकार नहीं, मन दी पटकना ताही खत्म हो सकती है। मन दे परम ताही दूर हो सकते ने जे असी दिलों अरदास।

और सच्चे मनो परमेश्वर दी सिफत सलाह करिए। कई कहंदे ने साडी अरदास पूरी नहीं हुई, सुखना सुखी सी पूरी नहीं हुई। जद अरदास करो दिल दी गहराई विचों अरदास करो और सच्चे मन दे नाल परमेश्वर दी सिफत करो, अरदास भी सुनी जाएगी। मन दा धोखा परम वहम भी दूर।

अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लम्मे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पए देखते और एक पासे भाई अजय राम और एक पासे रायपुर की तलवंडी का राजा राय बुला और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया। कहंदे होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हो पर सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखल होए और आंदे आ धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई सत करतार ए सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल दी गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारा कर दी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंड ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया है तैनूं उड़ीकदे हैं तैनूं बड़ा मैं झिड़किया तैनूं मैं एक वारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल धन गुरु नानक साहब। माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पा लै आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलिया सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर कुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्मदिन ते चोला सी के रख दी है। सैब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच ए खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और वह प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लें मैं फिर मिलांगी।

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो। बड़ी वैराग विच है तन गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तो थले उतरे भज के आए चरणा ते मथा टेकन वास्ते। पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लईआं, कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो, भैणा भरावां दे पैरां ते मथा टेकन ते नहीं हो सकदा। सत्संग ए इतिहास ये कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ये कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताकि साडे मना विच साडे हिरदे विच प्यार होवे। जे साडे हिरदे विच प्यार होवेगा साडे घर विच भी प्यार होवेगा। जिहदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिहदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा। चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जेड़ा चंगा पति ना बन सके, चंगा पिता ना बन सके, जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके, जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके, सत संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता। ओ ना सिख हो सकता है, ओ ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई, वो किसे गिनती विच नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने

जद इतने बचन कहे भैन जी है बेबे नानकी तुसी वड़े हो तुसी मेरे पैरा ते मत्था टेको ते नहीं हो सकता साथ संगत एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ते वखरी गल है इना गल्लां नूं कोई मन्ने पावे ना मन्ने पर सुख ता मनण विच ही है। हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं किया मरदाने आ हुण तुसी जाके भाई अजय राम जी नूं लै के आओ। शहर वासियां नूं पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है। पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछदे ने बेटा किथे चले साहब जी कहन लगे मरदाना भाई अजय राम नूं वैराग विच उठा नहीं सके। धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन। अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो। धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ए प्यार भागा नाल मिलदा है और इस प्यार नूं ओही जानदा है जिसने ए प्यार कीता। भगत कबीर जी कहंदे ने सो कत जाने पीर पराई जां के अंदर दर्द ना पाए। भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको ही गल नजर आती। भगत रविदास वह भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब कहते ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले के ए प्रेमा भगती दे तीर जेड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने ओही जाने

सब कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उना दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उन ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे वपारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा वाहिगुरु तों।

ऐसे महापुरखां दे सिर्फ दर्शन ही कीतियां ओ पाप मुक जांदे हन खत्म हो जांदे नहीं।

मनुख भगती करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहने ने बड़ा सुखैन तरीका है महापुरुषां दे चरणां दी पूजा कर।

0: सतगुरु दा कर्म की है। सतगुरु अपने सिख नूं परमेश्वर दे नाम दे नाल जोड़दा है। परमेश्वर दा नाम हिरदे दे विच दृढ़ करवांदा है और गुरसिख नूं सच्चे सुख दी प्राप्ति करवा दिंदा है। ए सुख जो नाम दे राही प्राप्त हुंदा है गुरसिख नूं साध संगत दे विच्चों प्राप्त हुंदा है और इस दी प्राप्ति तो बाद जितने भी दुख हन कलेश हन इना सारयां दी निवृत्ति हो जांदी है। सारे ही संसे दूर हो जांदे हन ते सुखां दी प्राप्ति हो जांदी है। साहिबां दा फरमान है,
1: गुण निधान हर नामा जप पू

जयकार करदा है। इस जय जयकार दे पिछे इको ही गल है जो राज दी है, क्योंकि गुरु तो बिना होर कोई ऐसा नहीं जो प्राणी मात्र लई मुकत दा द्वार खोल सके। नौ दरवाजे दसवां द्वार, बुजरे ज्ञानी एहो विचार, एहो ही ब्रह्म दी विचार है, और जेड़ी विचार गुरु तो बिना होर कोई दे नहीं सकदा। साई फरमान करदे हन, गुर कीनो मुक्त द्वारा सब सृष्ट करे जयकारा, क्योंकि दुनिया विच कोई किसे दी एक दिन दो दिन महीना जा साला बदी मदद कर सकदा है, मगर परमात्मा जो है ओ गुरु राही इस संसार दे विच आके सारे संसार नू फिर परमेश्वर दे नाल जोड़दा है। साई फरमान करदे हन, क्योंकि गुरु ही है जेड़ा दोबारा इस मनुख नू परमात्मा दे घर तक पहुंचा सकदा है, और ऐसे दा ही साथ सच्चा है, जो सच्चे गुरु दा साथ करदा है ओ ही सच्चे परमात्मा नू पा सकदा है। साहिबां दा फरमान है।

सिद्ध मंडली विच पहुंचे ता सिद्धा ने बेनती की सच्चे पातशाह दसो ओ साहिब कैसा है और उदी साहिबी कैसी है। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे साचा साहिब साच ना है। ओ साहिब सच्चा है और उसका नाम भी सच्चा है। साचा साहिब साच ना है पाखियां पाओ अपार आखे मंगे दे दे दात करे दातार। ता सिद्धा ने बेनती की फिर ऐसे वड्डे साहब दे कोल जदो जाइए ता उदे अगे भेटा की रखिए। आज संसार दे पदार्थों विचों उदे अगे कुछ पदार्थ तन दौलत कुछ रख दिता तां की रखे। उदियां दातां विचों जे कुछ थोड़ी जी दात थोड़ी जी वस्त उदे अगे रख दिती तां क्या ओ प्रसन्न होवेगा। ओ सच्चे साहब दे हजूरी जदों जाइए तां भेटा की रखिए। ता गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सिद्धा ने जदों ए पुछिया फेर के अग्गे रखिए जित दिसे दरबार। साहब जी कहन लगे ए पुछदे हो के उस सच्चे साहब दे हजूर की रखिए तां फेर के अग्गे रखिए जित दिस फेर के अग्गे रखिए जित दिसे दरबार। मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। साहब जी कहन लगे अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। जे उस मालक दी हजूरी विच जाओ सच्चे साहब दे कोल जाओ तां भई ओ तां इक सिफत सलाह पसंद करदा और जो भी उसका गुण गाउंदा है उस गुण गाउन वाले वाल उस परमेश्वर दा मुख हो जांदा है। साथ संगत बोलो श्री क्योंकि ओ साहिब सदा नित नवा है और संसार उदे कोलों दाता ले ले के खा रहा है। इस वास्ते साहिब मेरा नीत नवा सच पुराना ना थिए नाम ना मैला होए। सच कदे पुराना नहीं हुंदा और परमेश्वर दा नाम कदे मैला नहीं हुंदा। साथ सगत बोलो श्री इस वास्ते साहिब मेरा नीत नवा। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नित नवी बाणी है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन नित नवे दर्शन। इस वास्ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जिथे अकाल पुरख दी उस्तत कर रहे हन सानू जाच सिखा रहे हन कि असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी आने वाली पीढ़ी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी उपमा किवें गानी है।

लक्ष्मी। बाबे दा आउणा सुन के सारे लोग उधर नू आ गए जिधर गरीब नवाज पातशाह बैठे सन। लगी बरसन

अपनी शक्ति नाल ओ जेड़े लोटे विच लोग पैसे पा रहे सन ओ लुका दिता। भाई साहब भाई गुरदास ने बड़ी

भगतिया गई भगत भोले। जिस वेले भगतिया ने तकिया भी जिदे विच लोग माया पा रहे ने, ओ लोटा किधर चला गया? ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतिया नू ओ भगत पाउणी भुल गई, ना उतार रहा ना उराग रहा।

करके उडरन पंखी। भाई साहब कहंदे ने कोई उड़न वाला पंछी बन रहा है, कोई बघियाड़ बन रहा है, कोई चीता बन रहा है, कोई शेर बन रहा है। एक पर कर कर

परमात्मा अपने सेवक दा मददगार बनदा है। करतार ने सदा तो ही अपने दास दियां सारियां मनोकामना पूरियां कीतियां हैं। गुर पूरा नमस्कारे, प्रभु सबे काज सवारे। सेवक नूं परमेश्वर ने किसे किस्म दी थुड़ नहीं रहन दित्ती। साईं फरमाउंदे ने, हर अपनी किरपा तारी, प्रभु पूरन पैज सवारे। जेड़ा मनुख पूरे गुरु दी शरण पैंदा है, ओट लैंदा है, आसरा लैंदा है, साईं फरमाउंदे ने यकीन जानो कि परमात्मा ने उस दे सारे काम सवार दित्ते। प्रभु ने उस मनुख उते मेहर दी निगाह कीती ते लोक परलोक विच उस दी लाज चंगी तरह रख ली। शब्द विच साहिबां दा

तू मेरा बड़ा मालिक है, तू पारो स्वामी मोरा, ए पुन पदार्थ तोरा। तू मेरा बड़ा मालिक है, तेरा नाम पदार्थ जो मैनू गुरु दी राही मिलिया है, ए तेरी ही बख्शिश है। जन नानक एक ते आया, सर्ब फला पुन पाया। जिस मनुख ने गुरु दी शरण पै के परमात्मा दा सिमरना शुरू कर दिता, उसने सारे फल देन वाली

दिना विची सिखाने शंकरगढ़ मिचनी बालासार ते पिशौर दे किलिया नू जित लिया। सिख राज दिया हद्दा काबल वालू वदन लगिया। चार चुफेरे सरदार हरि सिंह नलवे दी बहादुरी दिया तुम्मा पै गईया। नव्या किलिया नू जित पुराणिया दी मुरम्मत कराई। पठाणा विच हलचल मच गई। ते फिर एक रोज सरदार हरि सिंह ने हल्ला बोल दर्रा खैबर दे बूहे जमरौद

जमरौत दी जंग विच सिखा ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। कावल दियां गलियां बाजारां विच नलवे दियां गल्लां होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू बद्दिया देख, पठार सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरी सिंह नलुए दी चढ़त, पठाना नू अपनी मौत दिसन लगी।
1: कई हजार मुल्किया कठा कर शमी खान ने अपने दादे पड़दादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया।

0: 28 अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाना नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया। तलवारा पिड़िया
1: धरती लहू लुहान हो गई।
0: लोथा ते लोथा चढ़ गईया। गुरु दे सिंघा ने ऐसे हद दिखाए कि गाजिया दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपा दे गोले दागे। रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पाड़ पै गया।
1: हुण महासिंह अगे 3 काम सन, किले दी राखी करना, कंध दा पाड़ पूरना ते पिशोर बीमार पए सरदार हरी सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघा दे रोक दिया बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल किले विचो निकल तुरी। रातो रात पेंडा मुका पिशोर च सरदार हरी सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पुचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया। डौले फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है। मैं जान नालो सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघा नू इकट्ठे कर सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

नगाड़े ते चोट लगी, खंडे तलवारा ते बर्छे लिशके, केसरी निशान चूले, कोड़िया दे पौड़ा नाल पहाड़िया गूंज उठिया। दस कु हजार सिंघा ने जमरौद वालू कूच कर दिता। सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: 3 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने सिख फौजा समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारा बरछिया विच्चों मौत दे चंग्यारे निकले, लोथा नू लिताड़ दे सिंगा दे कोड़े अगे वदन लगे, मनुखी सिर मतीरिया वांग पैरा विच रुलन लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई, सरदार हरी सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नू एउं टकरे

0: सरदार हरी सिंह ने फट नू कुटके बन लिया, कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंचदिया ही जत्थेदार महा सिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तो ला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वध दी गई,
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी, अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ उते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया, जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वाल तक सरदार हरी सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आख्या,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया, मेरे पिछों घबराउना नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो, खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वाल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

पर फिर सोचे मना ए जेड़े फुल तू सुचे समझ के लिया है ए ता झूठे किवें जदों फुल खिड़दा है ता पवरा उन्हों संग जान।

इस तरह रम्यो होया है। जिस तरह दर्पण शीशे दे विच साडा चेहरा मौजूद है, जदों शीशा देखांगे सानू साडा मुंह नजर आवेगा। इसे तरह ही वो परमेश्वर है, जदों देखांगे

शब्द गुरपीरा, शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा, शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग भौराना।

जयश्री जयंत श्री आदि के नाम नाल संबोधित श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित जयत श्री ही है। बड़े मनोरंजक अते कठिन राग नूं शुद्धता सहित महान गायक ही गा सकते हैं। जयत श्री दा प्रभाव सुख अते खुशी देने वाला है। खुशी लैण लई मन दे आलसिया उगलाना वाला सुभा छड हीरे विच रतन नाम नूं वसा के गुरु बख्शिश लैनी पैंदी है। इस राग नूं मनोरंजक बनाउण लई इस दे सरूप विच ईशव धैवत कोमल मध्यम तीबर बाकी स्वर शुद्ध लगाए जाते हैं। आरोह विच रिश्वत धैवत वर्जित हैं। इसका वादी सुर गंधार अते संवादी निषाद है। यह राग दिन के चौथे पहर गाया जाता है। राग जैतसरी विच दो शब्दों का कीर्तन सरवण करो। पहला शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी की रचना है। इसन गा रहे हैं बीबी नवेदिता कौर जी। शब्द की तुक है कोई जन हर स्यो देव है जोर। दूजा शब्द गुरु रामदास जी की रचना हर हर सिमरो अगम अपारा भाई महेंद्र सिंह जी सागर प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला शब्द कोई जन हर स्यों देव है।

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल के मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा परिया तकना के परमात्मा रूप

कुलवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिदे ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।